0: गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हाय हेलो, दिस इज अली असगर हियर ऑन रेडियो हाजी 1674 AM। सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
6: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर।

0: You are listening.
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio
0: Hanji. Stay tuned.
2: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरीबी टोयोटा।
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तों वेरीबी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड, हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरीबी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur. I'm a Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.

0: Man is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ। ਹਾਂਜੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी, मैं हूँ इनका और आप मुझे सुन रहे हैं।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: ਸਤਿਕਾਲ ਮੈਂ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 1674 AM।

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी बखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इन्नी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन। व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
2: एक कल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
1: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
3: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
4: Create terror.
1: देखो दस्तार तुहाडे नेड़ले सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वालियो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी।
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो।
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ जी
1: हाँ भाई सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: और जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
4: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
5: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
5: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
6: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
7: रेडियो हाँ जी 1674 AM

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.

0: You are listening.
1: Haji Haji, Haji Haji, Haji Haji. Radio Haji.
2: Radio Haji. 1674 AM, 24/7 Indian Radio. Sydney ka apna Indian Radio Station.
1: Radio Haji.
0: Stay tuned.
3: मेरे शहर दी सब तो चंगी खुशबू तेरे कोलों संग गई नी तू मुर्दे जिंदा कर देंगी जे कबरां

0: हाँ भाई सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: हां जी, स्विंग ग्रोवर, स्विंग ग्रोवर। हां जी हां जी, 1674 ये नहीं है 71-72, ये है 1674, ये है 1674। सुनते रहो सुनते रहो। हां जी, AM।

0: हाँ जी
1: हाँ वे सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हाँ जी
0: हाँ जी
2: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
3: और जो हुकम मेरी सरकार
2: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
3: आहो जी आहो
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स तंच विच वी तुहाडी सेवा विच हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
4: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपने टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
6: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
5: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
6: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960

0: टीचर हजे हॉलीडे पे गई हुई है।
1: ओके
0: नेक्स्ट वीक आऊंगी।
1: ओके गुड गुड गुड गुड।
0: अपन संडे पंजाबी का क्लास गए सी।
1: वेरी नाइस। तुम तो सारा कुछ ही करी जांदे हो ते निका निका निका निका सारा कुछ ही है। थैंक यू ते
0: थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय।
2: हैव अ नाइस डे।
1: थैंक यू। तुम्हारा दिन बढ़िया बढ़िया रहे। ते युवराज तुसी आने रो।
2: युवराज सत श्री अकाल।
1: हेलो। चलो ये लेट ही
0: आने।
1: हाँ जी सत श्री अकाल जी।
2: सत श्री अकाल। की हाल चाल,
1: चाल ने तोड़े?
0: मेरा ठीक है थोड़ा। की हाल है?
1: साडा भी ठीक है भाई। की ले आए फिर आज?
0: हम एक चुटकुला।
1: ओके।
0: हम एक बारी पप्पू डॉक्टर को जाना थे। कहंदा भी तुसी कार जान ले हम किन्ने पैसे लोंगे? फिर डॉक्टर कहंदा अभी 300 रुपए। फिर डॉक्टर आपकी गड्डी कर देता ते पप्पू ओहदे विच बैठ जांदा। फिर जो पप्पू दी कार ते पहुंचदे आ फिर डॉक्टर कहंदा मरीज किथे आ? पप्पू कहंदा भी इत्थे तो कोई मरीज है नी। ओ तुसी 300 रुपए लैंदे सी घरे आन लई ते टैक्सी आला 500 रुपए लैंदे सी इसलिए मैं सोचदे नाल ही आ गया।
1: ओ वाह।
0: डॉक्टर दे होश।
2: वाह वाह वाह।
1: आ वधिया स्कीम है ना जी एदा होवे ते चंगे पैसे कटा गए। ये वधिया हस्पताल लागे बंदा घर लै छड़े हां जिथे मर्जी डिगा रवे ते उपे छड़ जान। थैंक यू। थैंक यू जोरा।
2: थैंक यू। बुलाओ ता भी नहीं आंदी एम्बुलेंस।
1: फिर चुटकले बनाउणा। फतेह तुसी आउने रहो। मन्नत सत श्री अकाल।
3: सत श्री अकाल अंकल जी ना यश दीदी जी।
1: सत श्री अकाल
2: मन्नत जी। की हाल चाल है?
3: मैं ठीक हूं तुसी किवें हो?
2: असि बहुत वधिया। थोड़ी आवाज बड़ी गूंज रही है। स्पीकर ते फोन?
3: नहीं।
1: कुछ ते करदी है कुड़िए नु?
3: नहीं
1: नु कुछ ते खराबी कीती है
2: ना एकदम ही आई आवाज इत्ता दी।
1: हौली हौली इदां लगदा जिदां ना मन्नत कोई होर बोलदा
2: ना वड्डी होई जा रही है ते इहदा स्टाइल चेंज हो रहा है।
1: हुण तां स्टाइल मार मार के गल्लां करदी है कुड़ी।
3: ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਹੁਣ ਫੀਫਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ।
1: ਓਹ ਯੇ
2: ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
3: ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਪੇਨ ਹੀ ਜਿੱਤੂ। ਸਚਿਨ ਜੀ ਸਪੇਨ ਜਿੱਤ ਗਈ। ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਜਿੱਤੂ ਪਰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਸਪੇਨ ਹੀ ਜਿੱਤੂ।
1: ਆਹ ਓਕੇ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਦੋਗੇ ਫਿਰ? चलो थोड़ी थोड़ी कह लेने की सुनाओगे फिर?
3: अज मैं सुनाऊंगी एक
1: बोली। अड़ गया नी गोल गप्पा ओदे संग विच। इन्ना करारा इन्निया मिर्चा पाइया विच।

0: वही सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
2: जुगाड़ नहीं ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
1: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
2: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au
3: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो
4: और जो हुकम मेरी सरकार
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे
4: आहो जी आहो
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच
5: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार
6: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है एक कहानियां कई सदियां दी
5: स्टारिंग तरसेम जसर गीत गुराया ते योगराज सिंह
7: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड वी हैव किंगशिप इन आवर्स
8: क्रिएट टेरर
5: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू
3: हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
9: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
3: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
10: रेडियो हांजी 1674 आस करते हैं दिन तुहाडा वधिया जा रहा होगा चढ़दी कला च होगे उस रब का शुकराना कर रहे होगे चेहरे ते होएगी मुस्कुराहट जेकर नहीं तो आओ सब तो पहला एक काम करिए तो बिल्कुल इस तरह के नाल इस मुस्कुराहट नू इस खुशी नू अपने चेहरे ते सजा के रखियो सवेरे सवेरे दे समय जे खिड़े मत्थे तुसीं घरों निकलदे हो तो फिर सारा दिन तुहाडा खिड़िया रहिंदा तुहानू सारे खिड़े मत्थे वाले लोग टक्कर दे जिदां दी एनर्जी तुसीं सवेरे घरों लैके निकलदे हो उस तरह की अगों एनर्जी तुहानू सारा दिन मिलदी कौन नहीं चाहता कि मैनू सारे खिड़े मत्थे जी आया आखण तो फिर सब तो पहला अपने आप दे विच बदलाव लिआउणा जरूरी आओ फिर एक खुशी लैके अगे वधदे उस रब का शुकराना करदे अगे वधदे समा हो चुका अज की कहानी का एक वारी एक पिंड दे विच एक बंदे नूं रब दे उत्ते बड़ी अथाह शरदा सी उन्हूं लगदा सी कि जो भी रब मेरे लिए करूगा बहुत वधिया करूगा उन्हें किते कथा सुनी ते उन्हूं पनले पन लिया कि तुहानूं कुछ करन दी लोड़ नहीं रब तुहाडे सारे कार च आप सवारदा जिहड़ी जगह दे उत्ते नौकरी करदा सी उस जगह के उत्ते कोई पैसे भी खास ना बनते पर फिर भी वह रब के उत्ते डोरियां सुट के उस जगह के उत्ते काम कार करता रहा घरवाली बथेरा कहती इन्ने क दे नाल गुजारा नहीं होना हुण ते साडे बच्चा भी हो गया साडा दोवां दा गुजारा चल जांदा है हुण नाल कुछ होर हाथ पैर मारना पैना पर उहदे उत्ते इन्हां गल्लां दा कोई असर ना हुंदा उहनूं लगदा सी कि जिथे मैनूं रब ने रख्या मैं उत्थे खुश हां जिथे उहदी मर्जी होई उहने आपे लै जाणा एक दिन अचानक उहदा पुत बीमार पै गया घरवाली कम्म ते भज्जी भज्जी आई जी उन्हूं हकीम दे कोल लैके जाओ। काम तो छुट्टी लैके घर आया, हकीम दे कोल लैके गया तां उन्हें अगे किते होर लैके जाण दे लई कहा। शायद इन्हें पैसे नहीं सी, इस वजह दे करके घरे ही कोई ना कोई ओड़ पोड़ करने शुरू कर दिते। दूर लैके जाण दे विच खर्चा भी होना है, जिथे काम करदा सी पैसे मंगे, उन्होंने एडवांस दे विच पैसे देने तो मना कर दिता। हौली हौली बच्चे की बीमारी वध गई, बच्चे दे सराहने बह के रब दे अगे अरदास बेनती करता रहा। एकदम अचानक उन्हें यह लगा कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया, उहदे रोण की आवाज़ बंद हो गई। बड़ी खुशी हुई, शुकराने दे विच अरदास कीती अपने रब की। घूम के आण बच्चे दे सराहने बैठा तां की वेखता, बच्चा दुनिया ते नहीं रहा, इकलौता पुत दुनिया तो चला गया। वोटी ने इस सारे कुछ दे लई घर वाले नूं जिम्मेवार ठहराया, तेरे सामने वह मर रहा सी, तू हाथ ते हाथ धर के बैठा रहा, मैं तेनों कदी माफ नहीं कर सकती, मैं हुण तेरे नाल नहीं रह सकती। वोटी घर छड़ के चले गई तां घर रहण दा होर कोई कारण नहीं सी। दिमाग दे उत्ते डूंघा असर होया, इधर उधर घूमता फिरता घरों बेकार, बुरे हालात ने, कदी कदाई सोचता कि मेरा की कसूर, मैं तां उहदे उत्ते डोरियां सुट के जो मैं सुनिया उस हिसाब दे नाल कीता, जो मंजूर सी रब नूं होया, मेरा इहदे विच की कसूर सी, इदां मैनूं छड़ के नहीं सी जाना चाहिदा। एक दिन अचानक एक फकीर लागों लंघिया, फकीर ने बुरे हालात वेखे ते मोढ़े ते हाथ धर के पुछ ही लिया, भगता की गल, ठीक ठाक है? जिदा उह लभ ही रहा ही कि कोई आण मेरे मोढ़े ते हाथ धरे, किसी ना मैं दुख सुख सांझा करां, दसां कि मैं भी सच्चा हां, मेरे नाल की होई है। फकीर नूं जदों सारी गाथा सुनाई तां फकीर ने अपना कुत्ता उस बंदे दे पिछे छड्ड दित्ता। अपनी जान बचाउण दे लई भज के जा रुख ते चढ़िया। फकीर ने कुत्ते नूं आवाज़ मारी ते बंदे नूं थल्ले उतरन दे लई कहा। बंदा चंगा बोलता फकीर वाल नूं वधदा आवे, मैं सोचा सी तू रब दा बंदा है, भला बंदा है, चंगा बंदा है, मैनूं नहीं सी पता तेरा दिमाग हिलिया, मेरी गलती, मैनूं तेरे नाल गल ही नहीं सी करनी चाहीदी, मैं अपने दुखड़े तेरे नाल सांझे कीते ते तू मेरे पिछे कुत्ता छड़ता। फकीर कहन लगा, माफी चाहुंदा श्रीमान, मैनू नहीं सी पता कि तुहानू रुख ते नहीं चढ़ना आउंदा। एकदम सोचता कि हाँ एहो जे रुख ते नहीं चढ़ना आउंदा, पर फिर भी चलो मैं जान बचाउण दे लई चढ़ गया। फकीर कहन लगा, जदों तेरे पुत दुवारी वारी सी उदों ते तू खलोता रहा, जे तेनू नहीं सी चढ़ना आउंदा रुख ते हुण भी खलोता रहिंदा, कुत्ता वध तो वध तेरी लत्त ते दंदी वढ लैंदा, एक नहीं ते दूसरी ते भी वढ लैंदा, तेरी जान ते नहीं सी जानी, क्यों भज्जा अगे लग के, क्यों अपनी जान बचाउण दे लई भज्जा, अपनियां लत्तां बचाउण दे लई भज्जा, ते जे इदां ही भज्जणा सी तो फिर अपने पोता ही क्यों नहीं भजा, उदों तां तू लागे बह के अरदासां करदा रहा, ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਭੱਜਾਂ। ਅੱਛਾ, ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਕੋਲ, ਪਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਮੰਨਿਆ। ਰੱਬ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟਣੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ। ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਵੇਖਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਥਾਣੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਤੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਥਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਰਾਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਆਸ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝ ਕੇ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸੰਕੇਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਕੁ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਸੰਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਉਹ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੀ ਸੁਣੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਅਧੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸੁਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਫ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਰਹੀ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵਹੁਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਓਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ, ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਬਥੇਰੇ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਫਕੀਰ ਆਪਣੇ ਰਾਹੀ ਪਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੇ ਮੁਕਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਸੁਸਤ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਹਿੰਮਤ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਉਸ ਰੱਬ 'ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨ ਨੱਕ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪੇ ਕਰੂ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਸਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੁਸਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਕਰਤਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਉਹ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਆਪਣੀਆਂ ਊਣਤਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਗਲਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਉਸ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਨ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖੀਏ। ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜੋ ਹੁਣ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਆਪੇ ਚੰਗਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਛ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: White Hill Studios पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसड़, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
5: Create terror.
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी हांजी।
1: Here we go again. Attention, commission on and better than our

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
3: क्रिएट टेरर।
0: वेखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio, Hanji.
3: Bale bale bale.
2: Bale bale bale.
3: Thank you.

0: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
1: एक अल्लाह कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
0: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
2: They have slavery in their blood, we have kingship in ours.
3: Create terror.
0: देखो तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नू
4: हुन थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
5: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरबी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। इन्ना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यो हाँ जी 1674।
1: आ जा प्यार की होड़ी ले।
2: दिल बोले तो
3: हाट हाट
4: हवा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील

हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਓਏ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਰੇਡੀਓ।
2: यार तू इतने इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ये है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 ते या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au। Thank you.

ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: हां जी।
1: हाँ वे सिडनी वालियो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन, रेडियो हां जी।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: You are listening
3: Haji Haji Haji Haji Haji Haji Radio Haji
2: Radio Haji 1674 AM 24/7 Indian Radio Sydney ka apna Indian Radio Station
3: Radio Haji
2: Stay tuned।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानूं हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेरबी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
2: जद हुंदियां टुट्टियां रे आईयां तंग करदियां मैनूं दिलदारियां, जदों कदे दिल साडा हुंदा ऐ उहदा असीं ऐदा तेरा दुख झलदे। हुण साडियां स्पीकरां ते उच्ची उच्ची बोलो, हुण साडियां रेडियोआं ते उच्ची उच्ची बोलो, सैड सॉन्ग चलदे। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा सुखी म्यूजिकल डॉक्टर ते सुनदे रहो जी रेडियो। हांजी मैरो 1674 AM साडे गाने सैड सॉन्ग जैगर ऑल ब्लैक इन्हां ने मशहूर कीते ने, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਵ ਯੂ ਆਲ।

0: अधूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा भी लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी।

0: station is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालिया दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: हेलो, मैं हूँ सनी देओल और आप सुन रहे हैं हांजी 1674 AM।

0: ज्ञानी का निर्मल मंत्र,
1: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाव, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप,
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस गुण भागी पाइय, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइय,
1: ब्रह्म ज्ञानी को खुज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर,
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माह,
1: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश,
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथिया न जाए अधाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर,
1: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने,
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार,
1: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सब जीव है नहीं मरता,
0: ब्रह्म ज्ञानी मुकुत जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता,
1: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ,
0: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार,
1: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा, ब्रह्म ज्ञानी बानी, नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी,
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भगत जना के मन विश्राम, आठ आठ श्लोक,
1: उतार है जो अंतर नाम, सर्व मैं पेख है भगवान, निमख निमख ठाकुर नमस्कार है, नानक हो अपारस सगल निस्तार है, सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी,
0: मिथ्या नाही रसना परस, मन में पीत निरंजन दर्श,
1: पर तेरे रूप ना पीख है नेत्र, साध की टहल संत संग हेत,
0: न सुने काहु की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा,
1: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है, मन की बासना मन ते टर है,
0: इंद्री जित पाई दोख से रहत, नानक कोट मदे को ऐसा अपरस,
1: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन, विष्णु की माया ते हुए भिन्न,
0: कर्म करत हुए ने कर्म, तिस वैष्णो का निर्मल तर्म,
1: काहू फल की इच्छा नहीं बाछा है, केवल पात कीर्तन संग राचा है,
0: मंत अनंतर सिमरन गोपाल, सब ऊपर होवत कृपाल,
1: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे, नानक हो वैष्णो परमगत पावे,
0: भगवती भगवंत भक्त का रंग, सगल त्याग है दुष्ट का संग,
1: मनते बिनसै सगला भर्म, कर पूजा सगल पार ब्रह्म,
0: सत्संग पापा मल खोवे, तिस भगवती की मत उत्तम होवे,
1: भगवंत की टहल करे नितनीत, मंत अर्पै विष्णु प्रीत,
0: हर के चरण हृदय बसावे, नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे,
1: सुपंड जो मन पर बुद्ध है, राम नाम आत्म में सुध है,
0: राम नाम सारस पीवे, उस पंडित के उपदेश जग जीवे,
1: हर की कथा हृदय बसावे, सुपंडित फिर जो न आवे,
0: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल, सुख में जाने स्थूल,
1: सोमवार ना को दे उपदेश, नानक उस पंडित को सदा आदेश,
0: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान, चौवरना में जपे को नाम,
1: जो जो जपे तिसकी गाथ होए, साध संग पावे जन पोए,
0: कर कृपा अंतर उधारे, पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे,
1: सर्व रोग का औखद नाम, कल्याण रूप मंगल गुण गाम,
0: हो जुगत किते ना पाई है धर्म, नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म,
1: जिसका मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास,
0: आत्म राम तिस नदरी आया, दास संतर भाय तन पाया,
1: सदा निकट निकट हर जान, सो दास दरगह प्रवान,
0: अपने दास को आप कृपा करे, तिस दास को सब सो जी परे,
1: सगल संग आत्म उदास, ऐसी जुगत नानक रामदास,
0: की आ गया तुम हितावे, जीवन मुक्त सो कहावे,
1: ऐसा हरक तैसा सोग, सदा अनंत है नहीं बियोग,
0: ऐसा सुन तैसी उसमाटी, तैसा अमृत तैसी बिखाटी,
1: तैसा मन तैसा अभिमान, तैसा रंग तैसा राजान,
0: जो वरताए साई जुगत, नानक ओ प्रह कहिए जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ, जित जित का राख है तैसा तिनाओ,
0: आपे कन करावन जोग, प्रभावे सुई फन होग,
1: पसरे आप हुए अंत रंग, लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग,
0: जैसी मत दी तैसा प्रगास, पार ब्रह्म करता अवनाश,
1: सदा सदा सदा दयाल, सिमर सिमर नानक भय निहाल,
0: सुख मनी सुख अमृत पव नाम, भगत जना कै मन विश्राम, अठ नौ श्लोक,
1: उस्तत करे अनेक जन, अंत न पारा वार, नानक रचना प्रभ रची, बहुविध अनक प्रकार, सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी,
0: कई कोट होए पुजारी, कई कोट आचार व्यवहारी,
1: कई कोट भय तीर्थ वासी, कई कोट मन पर महदासी,
0: कई कोट वेद के श्रोते, कई कोट तपीसर होते,
1: कई कोट आत्म ध्यान धार है, कई कोट कब का विचार है,
0: कई कोट नपत नाम ते आवे, नानक करते का अंत न पावे,
1: कई कोट भय अभिमानी, कई कोट अंध ज्ञानी,
0: कई कोट कृपन कठोर, कई कोट अभिग आत्म निकोर,
1: कई कोट पर दर्ब को हिर है, कई कोट पर दुख ना कर है,
0: कई कोट माया सुरमा है, कई कोट परदेश भरमा है,
1: जित जित लाभो ते तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना,
0: कई कोट से जति जोगी, कई कोट राजे रस भोगी,
1: कई कोट पंखी सर्प पाए, कई कोट पाथर बिरख न पजाए,
0: कई कोट पौन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल,
1: कई कोट सिर सूर नखत्र, कई कोट देव दानविंद्र सिर छत्र,
0: सुमदरी अपने सुतार है, नानक जिस जिस पावे, तिस तिस निस्तार है,
1: कई कोट राजस्थान सातक, कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र,
0: कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जंत,
1: कई कोट किए चरजीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी,
0: कई कोट जा किन प्रसाच, कई कोट भूत प्रे सुकर मिर्गा,
1: सब ते नेरा सब हूते दूर, नारक आप लिप्त रहा भरपूर,
0: कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नर्क सुर्ग निवासी,
1: कई कोट जन मै जीव मर है, कई कोट बहु जूनी फिर है,
0: कई कोट बैठती खाए, कई कोट खाले तक पाए,
1: कई कोट किए धनवंत, कई कोट

0: मोडी नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431 465 186 ते 212216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है
3: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा एएटी अपील्स स्किल्ड वीजा पीआर यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने
2: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा
3: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। परमात्मा को आखिर हमने तलाश लिया, हमने ये जाना कि जिस तरह से मैं एक आत्मा, एक लाइट का एक पॉइंट हूं, उसी तरह से वो परमपिता भी एक लाइट, एक पावर हाउस है। मुझे अपना ही स्वरूप या मैं उसी का ही स्वरूप हूं, लेकिन मैं पुत्र, वो पिता है। आगे और जानते हैं, याद होगा कि पिछली कड़ी पे हमने छोड़ा था कि कहां है वो, कहां रहता है वो परमपिता। तो आइए इस सफर को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और बातचीत शुरू करते हैं। हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: कहां है वो? हम मिल लिए उनसे, ये भी जान लिया कि वो कौन है, पहचानने की कोशिश की, पर वो रहते कहां है, कहां ढूंढे।
1: जब भी हम दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक रीति से नजर कहां जाती है? ऊपर की तरफ, है ना? बस अभी, कभी कहेंगे बस अभी थक गया, बस
0: कहां
1: अभी
0: हो तुम? कहां हो तुम? डेस्परेट होते हैं तभी से, वेयर आर यू,
1: वेयर आर यू। नाउ यू शुड थिंक दैट क्यों हमारी नजर ऊपर जाती है। हमें कोई कुछ भी नहीं पता कि ऊपर क्या है, ना हमें किसी ने बताया कि ऊपर कुछ है, लेकिन स्वाभाविक, दिस इज वाई वी से कि एवरीथिंग इज ऑलरेडी रिकॉर्डेड इन द सोल, तो स्वाभाविक रीति से नजर ऊपर जाते हैं, क्योंकि वो ही वो घर है जहां से हम आए हैं।
0: कहीं मेरी याद में रचा बसा है।
1: हाँ, क्योंकि हम उस घर से आए ना। सो अ मेमोरी इज देयर। अब किसी के अंदर वो मेमोरी क्लियर होगी और किसी के अंदर वो बिल्कुल फेंट है, लेकिन एक बार हम वहां से आए हैं तो उसकी मेमोरी
0: हमारे साथ है,
1: एब्सोल्युटली इनग्रेड है। ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला ही अब सब देखेगा, उसी को मतलब ऑटोमेटिकली नजर उसकी तरफ जाती है। तो जैसे ये जो दुनिया है जिसको हम कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, दिस इज आवर फिजिकल वर्ल्ड, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ मैटर, इट इज अ वर्ल्ड ऑफ साइंसेस, इट इज अ वर्ल्ड टाइम एंड स्पेस, यू नो ये लिमिटेड है। एवरीथिंग इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये एक ऐसी दुनिया है जहां आवाज है, जहां मूवमेंट है, हलचल है, जहां रिलेशनशिप्स है, जहां नॉइज है, ये सब कुछ है। वो ये दुनिया है जिसको हम स्थूल वतन कहते हैं, कॉर्पोरियल वर्ल्ड या फिजिकल वर्ल्ड, जहां हम कॉर्प्स में है,
0: ह्यूमन बींग्स है।
1: हाँ, हम बींग हैं लेकिन एक ह्यूमन बॉडी में हैं, तो हम कॉर्पोरियल वर्ल्ड या स्थूल वतन में हैं। लेकिन इस शरीर को लेने से पहले भी तो हम कहीं थे ना, यहां आकर हमने शरीर धारण किया, लेकिन इस शरीर को लेने से पहले हम कहां थे? तो परमात्मा आकर ही हमें उस घर का परिचय देते हैं। जैसे हमें अपना दिया, फिर अपना दिया परमात्मा ने, फिर उस घर का भी दिया कि इस दुनिया से पार, चांद सितारों की भी दुनिया से पार, बियॉन्ड ऑल दिस स्पेस दैट वी कैन सी, देयर इज अनदर वर्ल्ड, अ वर्ल्ड इन द सेंस, इट इज जस्ट अ रीजन एक्चुअली, यू कैन नॉट कॉल इट्स अ वर्ल्ड, बट इट्स बेसिकली अ रीजन, इट इज एन एरिया व्हिच इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, जहां सिर्फ प्रकाश है, इट्स जस्ट रेड लाइट, जस्ट गोल्डन रेड लाइट, एंड दैट इज द लैंड.
0: That is where we have.
1: Yes, absolutely.
0: Okay.
1: And that is the land where we all stayed. जहां परमात्मा भी निवास करते हैं और जहां हर आत्मा भी निवास करती थी इस सृष्टि पर आने से पहले. It is a land of complete silence. एब्सोल्यूट स्टिलनेस, स्थिरता. क्यों स्थिरता नहीं? क्योंकि वहां कोई संकल्प नहीं चलेगा,
0: कोई थॉट नहीं.
1: ये नॉइज तो नहीं होगी,
0: बॉडी
1: ये तो बॉडी नहीं है, लेकिन जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, बहुत लोग बैठे हैं, यहाँ हम अकेले भी हैं, भले हम किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक नॉइज अंदर चलती है, थॉट्स. लेकिन वो जो धाम है जिसको हम परम धाम कहते हैं, क्योंकि वो परम ऊंचे से ऊंचा धाम है, वो परमात्मा का रहने का भी धाम है, तो परम धाम कहते हैं. वहां कोई आवाज नहीं, संकल्पों की भी आवाज नहीं, इट्स अ थॉटलेस स्टेज, जहां आत्मा इज नॉट डूइंग एनीथिंग,
0: इट्स जस्ट देयर
1: अ बींग, जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन प्लस बींग. यहां आकर हम ह्यूमन डूइंग हो जाते हैं, आई एम डूइंग दिस, व्हाट एम आई बींग, देयर आई एम इन दैट जस्ट कॉन्शियंट बींग,
0: आई
1: एम जस्ट एब्सोल्युटली स्टिल. एक लाइट के अंदर एक लाइट सस्पेंडेड है, जैसे यू कैन सी इट्स लाइक स्टार, ये हम देख रहे हैं ना, इतने सारे स्टार्स, इट्स अ रीजन लाइक वास्ट एक्सपांस, नो टाइम नो स्पेस, एंड उसमें ये स्टार्स सस्पेंडेड है, अपने अपने टाइम पे फिर
0: नीचे उतरते
1: इस सृष्टि पर आते हैं। तो मैं आत्मा उस एब्सोल्यूट स्टिलनेस और एब्सोल्यूट साइलेंस, और इसीलिए हर आत्मा उस शांति को तलाशती है। और जब भी अशांत होते हैं तो हमें वो घर बहुत याद आता है, क्योंकि उस घर में कोई थॉट नहीं था, तो बिल्कुल साइलेंस था, बिल्कुल साइलेंस। एंड वहां परमात्मा भी रहता है, वो भी एक ज्योति बिंदु, एंड मैं आत्मा भी एक ज्योति बिंदु, तो उसको हम सोल वर्ल्ड कहते हैं। ये है फिजिकल वर्ल्ड और वो है सोल वर्ल्ड, आत्माओं का रहने का स्थान। अलग अलग नाम से उसको याद किया गया है, परम धाम, शांति धाम क्योंकि वहां शांति है, मुक्ति धाम क्योंकि हम इस शरीर के कर्म बंधन से मुक्त हैं, निर्वाण धाम वाणी से परे हैं। तो इन सब अलग अलग नामों से उसको याद किया गया है, वो उस परमात्मा का रहने का स्थान है और हम आत्माएं भी वहीं रहती। अब आप देखो, जब हम वहां थे तो ये स्मृति हमारे अंदर थी, परमात्मा भी एक ज्योति बिंदु, मैं आत्मा भी वैसी, ये मेरा घर, ये सारा इंफॉर्मेशन यहाँ रिकॉर्डेड है।
0: तो हर बार व्हेन आई टेक अनदर बॉडी, यू नो व्हेन आई मूव आउट फ्रॉम दिस बॉडी एंड टेक अनदर बॉडी, आई इन बिटवीन गो देयर?
1: नहीं, वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे, लेकिन हम बीच में घर नहीं जाते हैं। इट्स लाइक वो घर है और ये हमारा कर्म क्षेत्र है, वर्ल्ड स्टेज, वहां से हम आए हैं कर्म करने के लिए, और काफी समय तक हम इस सृष्टि पर रहकर ही इस कर्म क्षेत्र में पाथ प्ले करते हैं। फिर एक समय आता है जब हम थोड़ी देर के लिए फिर से घर जाते हैं और फिर वापस आकर वो सृष्टि रंगमंच वापस स्टार्ट होता है।
0: Because we've come for a purpose.
1: Yeah, this is like our work. This is our workplace. वो हमारा घर है। तो एक बार आप घर से ऑफिस आते हो तो 8-10 घंटे के लिए आते हो ना। आप ये नहीं करोगे कि हर एक घंटे के बाद घर जाना है बीच में। तो आप 8-10 घंटे के लिए आते हो, शाम को 8 बजे के करीब आप थोड़ी देर के लिए घर जाते हो सिर्फ रेस्ट करने के लिए। लेकिन वो घर जाने से आप रिफ्रेश होके, रेस्ट होके, रिचार्ज्ड होके वापस नेक्स्ट मॉर्निंग 8 बजे ऑफिस पहुंच जाते हो। तो सेम थिंग, ये हमारा वर्क एरिया है, वो हमारा घर है। थोड़ी देर के लिए जाएंगे रेस्ट करने के लिए, लेकिन फिर ज्यादा समय इस वर्क प्लेस पे बिताते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है कि कर्म करते करते करते हम बहुत थक गए हैं, तो अगर बीच बीच में हम कुछ क्षण निकाल के सिर्फ मन से बुद्धि से, आत्मा निकल कर नहीं जाएगी, लेकिन मन और बुद्धि से जब उस घर में चले जाते हैं ना और उस पिता के पास चले जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ बैठे बैठे भी हम वो रिफ्रेशमेंट अनुभव कर सकते हैं। जैसे अब आप बैठो और 2 मिनट के लिए अपने घर को याद करो, जस्ट गो होम फ्रॉम हियर, गो होम एंड बी विद योर फैमिली, यू विल एक्चुअली फील कि आप जाकर वो एक्सपीरियंस करके वापस आ गए। सो इट विल गिव यू दैट फीलिंग
0: हैप्पीनेस, यू नो,
1: दैट
0: कंफर्ट लेवल,
1: दैट कंफर्ट, क्योंकि घर मतलब कंफर्ट, घर मतलब प्रोटेक्शन, घर मतलब वो पिता की सिक्योरिटी, तो वो घर मतलब वो प्योरिटी। तो इसलिए हम मेडिटेशन मतलब वो घर जाना, उस पिता के मिलना, उससे बातें करना, फिर वापस आ जाना। कैसे करना? बुद्धि से, वो फिर हम मेडिटेशन में सीखेंगे। तो ये है कि परम धाम कहाँ हम पिता को याद करें, क्योंकि जब तक हमें उसका घर नहीं पता होगा तब भी याद करना बहुत मुश्किल है कि वो कहाँ पे है, कहाँ हम उससे मिलने जाएं। तो हमने परमात्मा का रूप देखा, उसका नाम देखा कि हम उसको प्यार से शिव बाबा कहते हैं, फिर उसका घर देखा, लैंग्वेज हम किस भाषा में उससे कम्युनिकेट करें, थॉट्स संकल्पों के आधार से कम्युनिकेट करते हैं, और संबंध हमारा उसके साथ जो संबंध बनाना चाहे वो बना सकते हैं, वो भी हम मेडिटेशन में देखेंगे। हम परमात्मा के साथ कोई भी संबंध जोड़ सकते हैं।
0: एक्चुअली यू नो वी कैन, माय गॉड, इफ वी हैव हिम, सी लाइक कितनी राइटर्स ने कितनी बार ये कहेगी कि अगर मुझे भगवान मिल जाए, अगर मुझे खुदा मिल जाए तो मैं ये कहूंगा, मैं ये कहूंगा। सो नाउ लाइक इफ
1: एब्सोल्युटली और उसके गुणों को तो हम जानते हैं, तो किसी को भी याद करना होता है तो क्या क्या चाहिए? उसका नाम, उसका रूप, उसके गुण, उसका कर्तव्य। आपने कहा था ना एक्ट ऑफ गॉड, कि हम सब यहाँ कर्म क्षेत्र पे हैं, तो उसका रोल क्या है, वो क्या कर रहा है? तो वो अपने परम धाम में बैठा है, वो अपने घर में बैठा है। पूरे हमारे इस ड्रामा के दौरान वो हमारे ड्रामा में इंटरफेयर नहीं करता है. इट्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फिफ्थ फ्लोर पे रहते हैं, ठीक है, आपके बच्चे ने ऊपर से नीचे झांक कर देखा कि सब बच्चे खेल रहे हैं, तो कहता है मुझे भी नीचे खेलने जाना है. आप कहते हो नीचे देख लेना, मतलब चोट लगेगी, दर्द होगा, नहीं मुझे नीचे खेलने जाना है, तो आप उसको भेज देते हो. दो तीन घंटा वो बहुत अच्छे तरह से खेलता है, लेकिन फिर उसको थक जाता है, चोट लगने लगती है, चीटिंग भी बहुत होती है, नीचे रोने भी वो लगता है. अब ये सब थोड़ी देर तो चलता रहता है, जब वो बहुत अति में पहुंच जाता है रोने के, कष्ट के,
0: तब आप पहुंच जाओ,
1: तब वो एक बार आपकी तरफ देखता है ऊपर सिर्फ, और सिर्फ एक बार बोलता है कि प्लीज मुझे आके यहां से ले जाओ. आप दौड़ते हुए नीचे जाएंगे, उसको उठाएंगे और ऊपर ले आएंगे, उसको हील करेंगे, सफाई करेंगे, चुप कराएंगे, सब कुछ करेंगे. नेक्स्ट डे
0: ही विल डू द सेम.
1: नेक्स्ट डे अगेन ही विल से क्या, आई वॉन्ट टू गो होम. सो दैट इज नो शिव बाबाज रोल इन दिस वर्ल्ड ड्रामा. वो हम नीचे आ जाते हैं खेलने के लिए, कुछ समय हम बहुत अच्छी तरह से खेलते हैं, इट्स अ गुड गेम, बहुत मजा आता है सारा कुछ करते हुए, लेकिन बहुत समय हो गया ना करते करते, तो बीच में से दुख अशांति ये शुरू हो गई थी, चीटिंग भी शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ रोना भी आया, हम बीच बीच में उसकी तरफ देखते भी गए, उसने कहा खेल ले थोड़ी देर और, लेकिन जब हमारी जो दुख थे वो बहुत अति में पहुंच जाते हैं, बिल्कुल हम जैसे कि बहुत जोर से चिल्ला पड़ते हैं कि बस अब हमारे से और सहन नहीं होगा, अब हमें बस मुक्ति चाहिए इससे, दैट इज द टाइम व्हेन ही हैज टू कम डाउन. और वो उस समय पर आ जाता है, नीचे आता है, एक एक बच्चे को फिर उठाता है, उसके सारे जो घाव है ना उस पे मरहम लगाता है.
0: I think now the time has come actually. I feel like crying, you know, because time now.
1: Yes, it is that time. He should not come. He has already come. परमात्मा आ चुका है, वही तो ये कार्य कर रहा है, वही तो हमें बता रहा है. मेडिटेशन है क्या, उसको याद करते हैं प्यार से, वो हमारे एक एक घाव को भर देता है, एक एक चोट को हटा देता है, फिर हमें फिर ठीक करके घर ले जाएगा, और फिर थोड़े दिन के बाद हम कहेंगे हमें फिर नीचे आना है. तो कई लोग जैसे कहते हैं ना बस मुक्ति चाहिए या मोक्ष चाहिए, वी डोंट वॉन्ट टू कम इन टू द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, बट इट डजेंट हैपन लाइक दैट, क्योंकि द नेचर ऑफ द सोल इज कर्म. यू नो, हम घर जाएंगे लेकिन थोड़ी देर के लिए, उसके बाद क्योंकि जस्ट इन दैट स्टेट ऑफ बीइंग ना, इट्स अ लिटिल बोरिंग एक्चुअली,
0: स्टिल है ना?
1: Yes, still है. हाँ. तो वो उसके जो सारी क्वालिटीज वो उसको यूज नहीं कर सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो वो सिर्फ जब हम बॉडी में आते हैं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, नहीं तो देर इज नो एक्सप्रेशन, देर इज नो एक्सपीरियंस. ना हम अपने को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ना हम कुछ अनुभव कर सकते हैं, वी जस्ट स्टिल. लेकिन शिव बाबा में और हमारे में क्या अंतर है कि हम शरीर लेते हैं, शरीर लेने से धीरे धीरे धीरे धीरे हम अपनी अवेयरनेस को ही खो गए कि मैं कौन हूँ, जो हमने कहा ईगो आ गई, क्योंकि वी फॉरगॉट कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो शरीर नहीं लिया, तो वो उस शरीर से उस साकारी दुनिया से न्यारा है, तो उसको कभी वो अपना ओरिजिनल स्वरूप भूला नहीं, और इसलिए उसकी क्वालिटीज में कभी
0: डिप्लीशन नहीं हुआ, कोई कमी
1: और
0: नहीं
1: और हमारे उसमें हो गई, क्योंकि हमने शरीर लिया, हम उसकी अवेयरनेस भूल गए अपने, और फिर हम वर्च्यूज की बजाय वाइसेस की तरफ, विकारों की तरफ.
0: नो बट एक्चुअली दैट एस्पेक्ट इज सो गुड, यू नो दैट वी रियली नीड, वी आर ऑल क्राइंग, वी नीड हीलिंग.
1: एब्सोल्युटली. तो परमात्मा उसी टाइम पर आता है जब हम सब की कलेक्टिव आवाज इतनी ऊंची हो जाती है, हमारे दुख इतने बढ़ जाते हैं, त्राही त्राही मच जाती है, और सच में इस समय त्राही त्राही मची है कि पिता अब बच्चों का दुख नहीं और नहीं देख सकता. तो वही ड्रामा के अनुसार उसका भी रोल है नीचे आने का, क्या करना है, ह्यूमैनिटी और नेचर दोनों को वापस रिस्टोर कर देना है अपनी पीस और प्योरिटी की तरफ. और उसमें क्या करना है, उसको कोई मिरेकल नहीं करना है. लोग कहते हैं भगवान आया तो फिर कोई मिरेकल हो जाए, सारी दुनिया परिवर्तन हो जाए. इफ वी लुक एट द वर्ल्ड ऑन अ ग्लोबल लेवल, वट एवर द केओस इज देयर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द केओस इन द
0: माइंड,
1: इन द सोल. अगर सोल रिस्टोर हो जाए तो वर्ल्ड अपने आप रिस्टोर हो जाएगा. तो गॉड्स रोल is to restore that peace and harmony in the world. कि ये जो सारा chaos हो गया है इसको वापस harmony में लाना है. लेकिन उसके लिए वो करता क्या है, आत्मा की, he restores the peace and purity of the soul. जब soul अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगी, प्रकृति
0: अपने
1: आप ठीक हो जाएगी,
0: बैलेंस
1: अपने आप बैलेंस. सो दैट्स हिज रोल. ही कम्स एट दिस टाइम, हील्स अस, रिस्टोर्स अस बैक टू दैट charged battery. Nature automatically takes its course.
0: But you said he takes us back also.
1: Yeah, he takes us back, absolutely, because little rest, na? He takes us back home, we rest for a little time, then come back.
0: So, but who goes? Like, whoever is in the dire need, actually, he can't take all of us, you know?
1: Yes.
0: You know, like, how does, actually, it's, you know, it's, if we look at it, you know, right
1: now... Iske liye har ek bachcha hai. Har atma उसका बच्चा है, भले उसे पहचाने या नहीं पहचाने, लेकिन हर आत्मा इस टाइम जो सृष्टि पर है वो उस परमात्मा शिव बाबा का बच्चा है. तो उसके लिए तो सभी का दुख एक बराबर है, लेकिन वो ये चाहता है कि हर आत्मा पहचान ले और अपने दुखों से मुक्त हो जाए. और वो ही ये प्रयास चला है जो हम हमेशा कहते हैं कि इतने सारे सेंटर्स, 130 कंट्रीज, 8500 सेंटर्स, ये सब सेंटर्स खोलने की क्या आवश्यकता है. दिल्ली शहर में आज हम हैं, 150 सेवा केंद्र है. क्यों? ताकि विद इन 5 to 10 किलोमीटर्स ऑफ वेयर यू आर स्टेइंग यू गेट दैट हीलिंग. आप सेंटर पे आते हैं, आपको शिव बाबा का परिचय मिलता है, अपना मिलता है, एंड योर हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट्स एंड यू आर रेडी. नॉट अबाउट टेकिंग द जर्नी होम, लेकिन व्हाट अबाउट माय लाइफ नाउ. वो तो बाद में जो होना है वो अलग, लेकिन अभी की जीवन क्या, वो जीवन बहुत सुंदर बन जाती है.
0: आई कैन रियली अंडरस्टैंड, यू नो, लाइक इट्स, अगर हम शिव बाबा की बात करें, उस परिचय की बात करें, उस एहसास की बात करें, आई कैन फील इट, यू नो. बट आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू, एक मैं सवाल आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के इस वक्त में सुख, खुशी, प्यार नहीं मिल रहा है, हम त्राही त्राही कर रहे हैं, हम मंदिरों में जा रहे हैं, वहां नहीं कुछ समझ में आ रहा, फिर हम उन रिचुअल्स में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इतना कन्फ्यूजन, इतना कन्फ्यूजन, उनसे कैसे बाहर निकल सकते इन द रियल.
1: मतलब एक है कि जो लोग समझ के कर रहे हैं, यू नो, पूरी अंडरस्टैंडिंग से, पूरे फेथ के साथ, लेकिन एक है जो सिर्फ डर के मारे कर रहा है, यू नो, कि मेरी नौकरी लग जाए तो उसके लिए ये इतने दिन उपवास, मेरी ये हो जाए तो उसके लिए ये पहनना है, उसके लिए ये हवन करना है, भाई आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, आप इतना दान कर दो, तो ये सारा फियर है. ये तो

0: जनरली ये कहा जाता भगवान से डरो, सो हम भगवान से
1: डरो इसलिए कह देते हैं क्योंकि अच्छा कर्म करो.
0: यू नो,
1: जो हमने कहा भगवान कहते हैं कि हर जगह है, देख रहा है, लेकिन एक्चुअली जब हमें सच में उसका परिचय मिल जाता है कि वो हमारा, यू नो, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप, कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है जो फियर पर बेस्ड होता है. यू नो, दुनिया में भी कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत डरा के चलते हैं, पर बच्चे के अंदर कभी वो प्यार नहीं, मतलब प्यार होता है लेकिन नो फियर है.
0: तो
1: व्हाट आई फील इज फियर एंड लव कैन नेवर बी टुगेदर. यू नो, देयर इज लव, दे कैन नेवर बी फियर.
0: एक्चुअली बच्चा फिर हमेशा चाहेगा कि मैं उनकी आंखों में कोशिश करता
1: हूं, तो फिर वो अपना नेचुरल नहीं होता. वो डर में रहता है, डर की वजह से वो झूठ भी बोल देता है, उल्टा डर की वजह से ज्यादा गलत काम करता है, छुपाने की कोशिश करता है. अब उसी तरह परमात्मा के साथ एक है कि हम डर का रिलेशनशिप बनाकर रखें, पर वो इसलिए क्योंकि हम उसको जानते ही नहीं थे. लेकिन वो पिता है, गुस्सा तो वो कर ही नहीं सकता, वो तो प्यार का सागर है. ही लव्स मी, ही इज द ओनली वन हु लव्स मी अनकंडीशनली. यू नो, अनकंडीशनल लव जो हम दुनिया में,
0: गॉड कैन नेवर बी एंग्री, वंडरफुल. गुस्सा तो भगवान आपसे नाराज है, मतलब
1: भगवान कभी नाराज नहीं हो सकता.
0: See, लेकिन लुक एट इट, आई थिंक आई हर्ड इट सो मेनी टाइम्स, यू नो, लाइक
1: भगवान नाराज नहीं हो सकता. See, that is the beauty. उसके अंदर कोई विकार नहीं है, because he is ever pure. तो गुस्सा कैसे आएगा उसको? ये हमने जो बना दिए बहुत सारे, परमात्मा को गुस्सा आया तो विनाश हो गया, ये यू नो, ये सारी चीजें. परमात्मा को अगर गुस्सा आ गया
0: तो परमात्मा कैसे रहा? बिकॉज ही इज टेलिंग अस नॉट टू बी एंग्री.
1: ही इज द ओशन ऑफ पीस, ही कैन नॉट हैव एंगर. वो पिता है, वो रहम दिल है, वो कल्याणकारी है, वो क्षमा का सागर है,
0: वो लविंग है, वो प्यार. हाँ,
1: सबसे पहली चीज तो प्यार है. इतना प्यार देता है, मतलब इवन द टर्म अनकंडीशनल लव विच आई यूज टू हियर पहले, यू नो, अनकंडीशनल लव, एंड आई फील नो ह्यूमन बींग कैन गिव अनकंडीशनल लव. इट्स नॉट पॉसिबल. अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस, नो ह्यूमन बींग कैन डू इट. आप कितना भी ट्राई कर लो, कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हो जाती है, और जब वो नहीं मीट होती तो हर्ट होता है. वो हर्ट नहीं होता. वो हर्ट नहीं होता, वो बहुत प्यार देता है. लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम कहें फिर हम कुछ भी कर सकते हैं. यू नो, जहां पेरेंट बहुत प्यार देता है तो उसका रिजल्ट ये होता है कि और भी ज्यादा सही दिशा में चलने का दिल करता है, क्योंकि वो इतना प्यार देता है. तो आपको लगता है कि वो जो आपको शिक्षा दे रहा है, आप उसकी हर शिक्षा को बस फॉलो करते रहो, क्योंकि आपको ये पता है कि वो हर चीज आपके फायदे के लिए है. सो ही इज अ वेरी वेरी वेरी लविंग.
0: ना, जो हमने बात उस वक्त की थी, आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात,
1: आंख बंद करके, क्योंकि ये पता है ना कौन बोल रहा है. कौन बोल रहा है तो निश्चय है. इसको ब्लाइंड फेथ नहीं कहेंगे. कई लोग कहते हैं ये ब्लाइंड फेथ है. नहीं, जब अगर हमें एक इंसान पर भी निश्चय हो जाए, सपोज मुझे निश्चय है कि आप हमेशा मेरे अच्छे के लिए ही बोलोगे, तो मैं क्वेश्चन नहीं करूंगी आपको.
0: नहीं, पर हम अपने पेरेंट को क्वेश्चन कब करते हैं? आई डोंट नो एनीवन एनी चाइल्ड क्वेश्चनिंग.
1: नहीं, बट अभी क्या होता है, कई बार चिल्ड्रन हैव दिस थिंग विद देयर पेरेंट्स कि नहीं, ये पता नहीं, मैं इनका अपना इसमें रीजन है. इनका ये मेरे पर्सपेक्टिव से नहीं सोच रहे हैं. यू नो, इसमें मेरा फायदा नहीं है, मेरा फायदा डॉक्टर बनने में है, ये चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं. सो ये सब लिमिटेशंस. अ पेरेंट एक्चुअली अच्छा ही सोचता है. इवन मनुष्य आत्मा कभी बच्चे के लिए गलत नहीं सोचते, लेकिन ईगो की वजह से अपनी थिंकिंग, यू नो, अपने लिमिटेड बैरियर्स है, लेकिन वो तो साकारी नहीं है ना. वो साकारी लिमिटेशंस में बाउंडेड नहीं है. वो हमारी बड़ी पिक्चर देख सकता है. ही इज नॉट बाउंडेड बाय टाइम एंड स्पेस.
0: एंड अगेन, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका जो लॉ ऑफ नेचर है या लॉ ऑफ कार्मिक डेथ,
1: वो हमें रिटर्न
0: तो करना ही,
1: लेकिन परमात्मा हमें सही कर्म करना सिखा देता है ना. जैसे आप माँ हैं तो आप अपने बच्चे को सही कर्म सिखाएंगे. अगर वो आपके कहे अनुसार चलते गए तो उसका रिटर्न क्या होगा? सही का सही है. तो रॉन्ग होने की कोई मार्जिन नहीं है. तो सबसे पहली चीज तो हम कहेंगे परमात्मा से डरना नहीं. बिल्कुल नहीं डरना.
0: बिकॉज
1: जस्ट टू ब्यूटिफुल, इज जस्ट टू ब्यूटिफुल. डोंट हैव टू गेट स्केर्ड ऑफ हिम. ही लव्स यू एंड यू नीड टू लव हिम बैक. And that's the relationship. Relationship with God is exchange of that purest love.
0: I love him, but then how do I tell him? You know, like how do I you know, like now you see. अभी तक I think हम जितने भी हम बातचीत करते आ रहे हैं, हमने खुद को भी पहचान लिया. और you know, like we were not even aware, but the moment the picture is clear, actually I can visualize. We can all visualize. You know, lot of confusions cleared. Even if we had taken

0: it as an assumption.
1: Yes.
0: Shiv Baba, क्योंकि जब तक हम experience नहीं करेंगे हम नहीं चलिए नहीं मानते. Assumption पे ही हमने माना कि शिव बाबा है और उसके बाद हमने ये पूरा logic दे दे के हमारे सामने एक picture create हो गई, which is I think so beautiful, so pure. Now, how do I get that love?
1: वो जो हम याद की यात्रा शुरू करेंगे ना, which we will see कि वो कैसे उसको याद करना है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को वापस रीगेन कर लीजिए कि वो मेरा पिता है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है, वो मुझसे नाराज नहीं है, मुझे उसको खुश करने के लिए कुछ नहीं करना है. जो बहुत सारे हमने विस्तार किया है ना कि भगवान को खुश करने के लिए
0: इसी तरह से करो ये करो,
1: हाँ. वो बाह्य चीजों से हमारे वैसे भी नहीं खुश होगा. वो क्या चाहता है हमसे? वो हमसे ये रिचुअल्स नहीं चाहता है. वो चाहता है हम जागे, हम ये जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं हम जागे और अपनी शक्ति को फिर से पहचाने. ये फिजिकल जो है ही फिजिकल नहीं है, जो फिजिकल है ही नहीं, तो वो हमारी फिजिकल चीजों से क्या खुश होगा? क्या उसको मैं, उसको तो कुछ मिलता ही नहीं है उसमें से. सो दैट कैन नॉट प्लीज हिम एट ऑल. सो स्टॉप फियरिंग एंड स्टॉप डूइंग एनीथिंग इन द नेम ऑफ फियर ऑफ गॉड. यू नो, इवन इफ समबडी इज गाइडिंग यू टुवर्ड्स दोज थिंग्स, यूज योर इंटेलेक्ट. सोच कर कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं. बिकॉज इस समय जब हम भय में होते हैं तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो हमारे भय को एक्सप्लोइट करते हैं. अभी अगर आपको, जैसे आप किसी नए शहर में चले जाओ और कोई आपको देखे कि आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं पता, तो आपको एक्सप्लोइट करने के लिए 10 लोग मिल जाएंगे. इसी तरह कुछ लोग ऐसे हैं जो देख रहे हैं कि हमें कोई ज्ञान नहीं है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हम तो बस अज्ञान में ठोकरे खाते हैं, तो उसको एक्सप्लोइट करने के लिए भी बहुत कुछ है. तो वो फिर देन इट बिकम्स लाइक मनी मेकिंग एंड सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ एक्सप्लोइटेशन. तो उस एक्सप्लोइटेशन से हमें अपने आप को बचाना है और फेथ से चलना है. बिल्कुल.
0: तो ये कुछ बहुत सुंदर एक्चुअली कि कुछ बातें इतनी क्लियर है कि भगवान से हम डर नहीं सकते क्योंकि वो तो परम पिता है.
1: डरेंगे तो उल्टा अच्छा रिलेशन नहीं बनेगा.
0: हाँ, क्योंकि हमने एक रिश्ता बनाना है. रिश्ता बनाना है क्या? रिश्ता बना हुआ है, उस रिश्ते को याद करना है. एक्चुअली इस पूरी बातचीत के लिए, इस पूरी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
1: ओम शांति.
0: ओम शांति. कितना सुंदर है हमारे पिता शिव बाबा. अगर हम मान भी लें, अज्यूम करते हैं कि हमने उन्हें माना, वो हमारे पिता है, परम पिता जिन्हें हम तलाश रहे थे. उनका परिचय इतना खूबसूरत है, कहीं ना कहीं दिल को तसल्ली है. मैं अपने आप कह सकती हूँ. हो सकता है आपके पास अभी भी कोई सवाल हो, कोई ऐसी बात हो जो आप हमसे पूछना चाहते हैं इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई. आपका स्वागत करते हैं. आप हमें ईमेल द्वारा या फोन द्वारा संपर्क कर सकते हैं.
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है. ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है. भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं. राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें.
0: रास्ते खुल चुके हैं, शिव बाबा अपना निमंत्रण दे चुके हैं. पहला कदम हमें बढ़ाना होगा. कैसे करेंगे हम उन्हें याद? अगली कड़ी में जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में. अब दीजिए इजाजत. नमस्कार.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया।

मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है। अनुमति दी, केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यही व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है। केवट ने कहा प्रभु एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा क्या कारण है। केवट बोला प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया।

बाबू ने कहा ये तो ठीक है, नाई और धोबी का मामला है, मेरा तुम्हारा व्यवसाय एक कैसे हो गया।

एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है। मैं भी नाविक हूं, आप भी नाविक हैं। थोड़ा सा फर्क है, मैं एक छोटी सी नदी का मल्लाह हूं और आप इस भवसागर के मल्लाह हैं।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हुन थोड़े मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
3: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपने टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेरी बी टोयोटा दे नाल।
2: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 Old Geelong Road, Hoppers Crossing, Werribee Toyota, the smart choice.

0: हाल चाल है।
1: मैं बढ़िया तरीके में हूँ।
0: असि भी बहुत
2: भी ठीक हूँ।
1: मैं पहला पहला चंदा ही अर्जेंटीना जितते बाद चो मैंने दिमाग चाया मेरे फ्रेंड बेस्ट फ्रेंड मुंडे सी मैंने क्या ही भी स्पेन जीतूगा यू बोल दे सी के बहुत तो मैं अन्ना तो टेस्ट करके मैं लग गया भी
0: पार्टी बदलती
2: ओ या यार
1: स्पेन जीतूगा
2: ओ या यार इस मौके नी पार्टी बदली नहीं ज्यादा बेइज्जती होती फिर
1: जान के नहीं कर रहे अर्जेंटीना जड़ी है इनु बच्चों पता लग गया स्टार्टिंग ऑफ द मैच क्योंकि वो बढ़िया नहीं खेलते अर्जेंटीना अच्छा। फिर मेनू पता लग गया स्पेन जीत तो मैं स्पेन नु सपोर्ट कर
2: ओ यार कोई गल नहीं होती अपनी टीम स्टैंड करी जांदा वा
1: नहीं
2: ओ यार मैं भी कहना अर्जेंटीना ने जितना वा तो फिर की हो गया नहीं यार तू तो हुण ये थोड़ी गल है हुण पल्ला ही बदल लिया फिर क्यों है नहीं जीती टीम ते
0: और की गेम स्पिरिट होना चाहिए एक हार एक जीत
2: टीम ही बदल लिया यार ये तो उन्हें ये तो हार क्यों उन मैसी कभी भी नहीं मैं स्पेन लोग खेलना हाँ। हैं ओ यार यार इधर थोड़ी करी था हैं तो क्या आप सपोर्ट की थी अर्जेंटीना नू टीम जीती हेलो
1: हेलो
2: सेठी अंकल दी टीम जीत गई सेठी अंकल कहिंदे पार्टी मेरे लो खाना फिर पार्टी च यार कुछ खाना तो हुंदा वा थोड़ा खर्चा थोड़ा खर्चा खुर्चा कराइए अंकल दा
0: पिज्जा पिज्जा कर लेने
2: हैं पिज्जा कर लिए पिज्जा ते पसंद ही नहीं करदा
0: फिर की अच्छा
2: हां ये की पसंद करदा हुंदा भला जलेबियां
0: ओ ते मैनूं लगदा सब नूं ही पसंद हुंदी जलेबियां दे
2: फते की पसंद करदा फिर
1: मैं कुछ नहीं
2: कड़ा पसंद करदा है कड़ा भी नहीं चलो ठीक है फिर चलो बनाओ फिर तुही खीर सेठी साहब स्पेन वाले खीर बना के कलो
1: जिन्ना कटो उन्ना वधे
2: जवाब तो बेस्ट है ही यार है फते
0: नहीं नहीं
2: टैक्स तुम फते कंफ्यूज करता हाँ।
1: नहीं
2: हाँ। ओके जिन्ना कटो उन्ना वधे हो एक यका
0: अपने अकॉर्डिंग कही जा रहे अपने दुख
2: एक ही चीज है भाई जिन्ना कटो ते उन्ना वधे चल हार गई
0: लियाज
2: हार गई ओ वाल वाला नालो ते भरा का छेती वधदा ही इतने नेल्स भी हो सकदे फिर
0: हां
1: यप्पा वाल कट दे तो फिर अपने बाल बड़े होंदे
0: नहीं होंदे
2: चलो फिर करो फिर एंजॉय अच्छा तुम घरे ही हो
0: फोन दे विच
2: अच्छा फोन दे विच वेखदे ओके ओके चलो ठीक है
0: थैंक यू
2: बाय बाय सी साडे नाल फतेह ते हुण साडे नाल कौन है आशीष तुसी आउंदे रहो

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा विच।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: रेडियो। हाँ जी 1674।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच भी तुहाडी सेवा वे।

0: यार तू इतनी नीचे थी, आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: व्हाइट हिल स्टूडियोज पेश करते हैं पीरियड एक्शन थ्रिलर दस्तार।
3: एक अल्ला कपड़ा नहीं है, एक कहानियां कई सदियां दी।
2: स्टारिंग तरसेम जसर, गीत गुराया ते योगराज सिंह।
4: दे हैव स्लेवरी इन देयर ब्लड, वी हैव किंगशिप इन आवर्स।
5: क्रिएट टेरर।
2: देखो दस्तार तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च 17 जुलाई नूं।
6: हां जी हां जी, ओए हां।

0: करके तो तसल्ली कर रहे हैं कि कहीं कोई सांस बाकी तो नहीं रही।
1: हम थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
2: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन ले, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
1: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
3: Hi man, I'm Saiko Mirbai from Manipur, Commonwealth champion, gold medalist. Sunte rahiye radio Hanji.
4: Bale bale bale.
3: Bale bale bale.
4: Thank you.

0: यार तू इतनी इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।